व्यासहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्त वसुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णी जातोपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपि पवोदि विशदाम्बर शङ्कुकर्ण।

राघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधती वसनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवत सन्निधानी वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन् मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।